0: साइंस एकेडमी। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
1: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
0: DS साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
1: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं, बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
0: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। DS साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
3: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS। हाँ।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
2: गंगापुर सिटी की धरती। रेडियो डीएस।

0: डीएस साइंस एकेडमी। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
1: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
0: डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
1: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं, बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
0: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर।

गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, नमस्कार, सत श्री अकाल, अंकापुर सिटी में आपका रेडियो दोस्त रेसिमिना। दोस्तों, सुबह के 10 बज चुके हैं और गंगापुर सिटी का फिलहाल तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस। दोस्तों, वक्त हो चला है आपके मनपसंद खूबसूरत कार्यक्रम हेलो फरमाइश का।

0: डीएस साइंस एकेडमी। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
1: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
0: डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
1: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं, बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
0: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर।

0: अभी है योगेश जांगड़े पे मैं तरक सकती हूँ।
1: योगेश जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
0: सिलसिला से कोई भी गीत सुनो।
1: ओके सर, आज पहली फरमाइश आप ही की है और चला रहे हैं आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में, उनके धन्यवाद।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: इस वक्त आप ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। और दोस्तों अपना रेडियो सेट छोड़कर ना जाइए, आपके साथ आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना जल्द करेंगे आप सभी की फरमाइशों को पूरा। बने रहे हमारे साथ रेडियो डीएस पर। फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं लू फरमाइश
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो जी, क्या नाम है आपका? कहाँ से बात कर रहे हैं? पितरिया सागर मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं। क्या कौन सा गाना सुनना हाँ। चाहते हैं आप? आपकी आवाज कट के आ रही है, थोड़ा सा साफ बोले, धीरे बोले। आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है।

0: सर।
1: हाँ जी नमस्ते।
0: नमस्ते,
1: क्या नाम है आपका?
0: माधव पटेल।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं माधव पटेल?
0: सागर मध्य प्रदेश
1: से। कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
0: डम डम डुबा डुबा डुबा डम डम डम डुबा डुबा डुबा डुबा
1: डम डम डुबा डुबा डम डम डुबा डुबा। सुना रहे हैं आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना।
0: थैंक यू।
1: वेलकम।

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: जी नाम बताएं।
2: मेरा नाम नंदिनी पटेल है।
1: नंदिनी पटेल जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
2: मैं पिपरिया सागर मध्य प्रदेश से।
1: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
2: मस्त रे हवाने तेरी मुझको पागल कर दे।
1: कौन सा गाना है?
2: मस्त हवानी तेरी मुझको पागल कर गई थी।
1: ओके नंदिनी जी सुना रहे हैं आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में। कुल के धन्यवाद।
2: ओके थैंक यू सर। ओके।

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे
1: में है शहर का कमाल DS89.6 शहर की धुन,
2: बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: डीएस साइंस एकेडमी। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
1: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
0: डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
1: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं, बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
0: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर।
2: हेलो सर, नाम बताएं आपका।
3: बहुत ही निवेदन कर रहा हूँ कुमार।
2: गाना बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
3: गाना सर गंगा जैसा मन तेरा।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हेलो
3: हेलो
2: जी, नाम बताएं सर।
3: जी शैलेंद्र सिंह गुजर।
2: कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: नसिया कॉलोनी।
2: बताए सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
3: डांडे के गाने चला दो कोई, सिर्फ डांडा नॉल वाला।
2: जी बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश प्रेस हो।

0: vibing, chill. How was that, eh?
1: Yeah, I keep talking, that's all.

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे
1: में है शहर का कमाल DS89.6 शहर की धुन,
2: ईट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 6 रेडियो DS जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
3: हेलो
4: जी, नाम बताएं सर आपका।
3: अरे गुड मॉर्निंग। हाँ सर, मैं जम्मू से बोल रहा हूँ, केशव शर्मा, और मैं सुषमा रानी।
4: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो DS से।
3: हाँ सर जी, तो आज हमें सुना दिए सर, संगम फिल्म का गाना है ना, ओ मेरे सनम, दो जिस्म एक जान है हम।
4: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश से बेहतरीन सा गाना रेडियो DS से। धन्यवाद।
3: ओके सर जी, थैंक यू।

0: हेलो
1: हेलो सर जी, नमस्कार जी।
0: सर नमस्ते, नाम बताएं आपको।
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पिल्लू खेड़ा से।
0: सर बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस पे।
1: कब के बिछुड़े हुए हम आज कहां आके मिले।
0: बिल्कुल सुना रहा हूं सर आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा सॉन्ग रेडियो डीएस में।
1: धन्यवाद सर जी, धन्यवाद।
0: वेलकम।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: गुलशन।
1: गुलशन कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: सुना
1: बताएं गुलशन, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस पे?
0: बंठाने चली देखो ए जाती रे जाती रे।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं आपकी फरमाइश का ये सॉन्ग रेडियो डीएस में। कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो सर, नमस्ते।
1: जी नमस्ते,
0: मेरा नाम सिमरन पटेल है।
1: सिमरन पटेल जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
0: सागर, मध्य प्रदेश।
1: बताए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: तू सफर मेरा।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम, आपकी फरमाइश का ही गाना। धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, नमस्ते साहब।
0: सर नमस्कार, नाम बताएं आपका।
1: ठंडी राम गुजर बोल रहा हूँ सर, यहाँ बुजुर्खा से।
0: ठंडी राम जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से।
1: सर शाम में है मगर नजर आती नहीं, प्रेम का है।
0: एक बार सुने बताएं सर कौन सा गाना है।
1: शाम में है मगर नजर आती नहीं।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में। कुल के धन्यवाद।

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे
1: में है शहर का कमाल DS89.6 शहर की धुन
2: हिट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
3: हेलो
4: जी, नाम बताएं सर।
3: मेरा नाम प्रियांशी पटेल है।
4: प्रियांशी पटेल जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: कटारा हिल्स भोपाल।
4: पता है मैम कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
3: कहता है कबूतर कोई तो है चक्कर।
4: बिल्कुल सुना रहे हैं आपकी फरमाइश का गाना।

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हेलो।
2: हेलो सर, नमस्ते।
1: सर नमस्ते, नाम बताएं आपका।
2: यशवंत पटेल बोल रहा है।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: यशवंत पटेल बोल रहा है सर।
1: यशवंत पटेल जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: सागर मध्य प्रदेश से।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: लॉन्ग ड्राइव पे चल।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश पे।

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे
1: में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन
2: ईट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6
0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं आपको।
0: आरजी।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर से।
1: गाना बताएं।
0: तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा।
1: सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पे बैठ।

0: राणा जी खबर पक्को है वो दुर्गा आज रात अपने यार के साथ मेले में जाने वाली है।
1: आज की रात उस लौंडे की आखिरी रात होगी। राणा से दुश्मनी लेने का मतलब है ये बंदूक और उसका सर।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं आपका?
0: तन्वी।
1: तन्वी जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर।
1: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
0: रामायण का सार।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम आपका।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
0: बीट में है सिटी का स्वैग
3: 89.6 पे
0: रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6
1: दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6

0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: हेलो,
2: नमस्कार।
1: हाँ जी, नमस्ते।
2: नमस्ते,
1: क्या नाम है आपका?
2: माधव पटेल।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं माधव पटेल?
2: सागर मध्य प्रदेश
1: से। कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
2: डम डम डुबा डुबा डुबा डम डुब डम डम डुबा डुबा डुबा डुबा
1: डम डम डुबा डुबा डम डम डुबा डुबा। सुना रहे आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना।
2: थैंक यू,
1: वेलकम।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: हेलो
3: हेलो सर जी, अपना डीएस रेडियो गंगापुर राजस्थान जी।
2: यस सर, नाम बताएं आपका।
3: हाँ जी मीना सर जी, प्यार से स्कॉर्पियो जी, सत श्री अकाल जी।
2: सत श्री अकाल सर, नाम बताएं आपका।
3: हाँ बताऊं जी, पिंड मावड़कोट जिला बठिंडा पंजाब से जगजीत मट्टू बोला सर जी।
2: जगजीत मट्टू जी बताए, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
3: सर जी मेरा ना एक जलंधर तो यार दोस्त है जी, जलंधर तो
2: जी,
3: उसका नाम है गुरदीप सिंह। अज उसने जी ब्याह की एनिवर्सरी है जी, मैं तो कहना नहीं होता, तुम्हें लख लख बधाइया दें जी। गुरदीप सिंह के ब्याह दी अज दिन लख लख बधाइया दें जी।
2: बताएं सर कौन सा गाना है?
3: उन्होंने एक फिल्म है जी बीवी हो तो ऐसी, फिल्म का नाम है जी जिला मर्जी ही सुना दूंगी
2: जी। बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का गाना रेडियो डीएस में। कुल क्या धन्यवाद।
3: ठीक है सर जी, सत श्रीकाल जी, सत श्रीकाल।

0: डीएस साइंस एकेडमी। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
1: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
0: डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
1: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं, बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
0: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
3: हेलो। हेलो जी, नाम बताएं सर।
4: अनिल गुजार।
3: अनिल जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
4: नसिया कॉलोनी।
3: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
4: सिद्धू मूसे वाला गाना चला दो।
3: बिल्कुल सलाह है सर आपकी फरमाइश का, बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में। कुल के धन्यवाद।
5: दोस्तों वक्त हो चुका है 11:30 का। इस वक्त आप मेरे साथ ऑन कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाई सिटी 9.6 रेडियो डीएस पर।
6: खूंजे लाउन लगे सेट कर लो बाज स्पीकर।

0: हेलो
1: हेलो सर नमस्ते
0: जी। नमस्ते, नाम बताएं आपका।
1: उमा शंकर पटेल बोल रहा था।
0: उमा शंकर जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: सर मैं बोल रहा हूँ पिपरिया सागर, जिला सागर मध्य प्रदेश से।
0: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस पे?
1: जी सर झलक दिखला जा, एक बार आ जा।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश के। रेडियो डीएस

0: नमस्कार मैडम।
1: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
0: रतनलाल बोल रहा हूँ मऊ से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: कौन पर देसी तेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे में है शहर का कमाल DS89.6 शहर की धुन।
1: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन DS, आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ DS इज वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड सपोर्टिव, एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइंड स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डाउट क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक JEE एंड NEET।

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS89.6 शहर की धुन
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6
2: हेलो
3: हेलो
2: नाम बताए सर
3: अंकित मीना
2: कहाँ से बात कर रहे हैं
3: गंगापुर सिटी
2: गाना बताए सर
3: रूट से
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर

0: रेडियो डीएस दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
1: में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
2: हीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
3: 89.6 रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6
4: हेलो
5: हेलो
4: जी नाम बताएं सर आपका
5: लवियांश गोयल
4: हाँ से बात कर रहे हैं गोयल जी
5: जयपुर
4: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से
5: लाल परी
4: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश लाल परी सॉन्ग
6: जी

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे
1: में है शहर का कमाल DS89.6 शहर की धुन।
2: हेलो
3: जी, नाम बताएं सर।
2: रफीक कहाँ लोगों मजे की पिक्चर है।
3: रफीक जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं।
2: मिलते मिलते अतिवादियों में
3: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश देते हैं।

0: डीएस साइंस एकेडमी। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
1: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
0: डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
1: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं, बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
0: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर।
2: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
3: मेरा नाम है।
2: कहाँ से बात कर रहे हो? कौन सा गाना सुनना चाहोगे? ओके सर, सुना रहे हैं आपके। सर मैं इस तरीके

0: दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
1: में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: हेलो
3: हेलो।
2: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
3: सौरभ मीना।
2: कहाँ से बात कर रहे हो?
3: गंगापुर सिटी से।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
3: अमर राज का चला दे।
2: ओके सर, सुना रहे हैं। फरमाइश करो।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: डीएस साइंस एकेडमी, क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
2: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
1: डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
2: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं, बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
1: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर।
3: हेलो,
4: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
3: संजना जाटव।
4: कौन से बात कर रहे हैं?
3: नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी।
4: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
3: गंगा के किनारे।
4: ओके मैम, सुना रहा हूँ।

0: दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
1: में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: हेलो
3: हेलो
2: हाँ जी, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे हो?
3: से
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
3: मारुति लेरे रोड पार्ट में डंडन लगने वाले का।
2: ठीक है सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।
3: कितनी देर में चल जाएगा मैम ये?
2: सर थोड़ा टाइम लगेगा और गाना थोड़ा कुछ अलग है, डंडन नोडी का दूसरा चला देंगे पर ये नहीं चलेगा। नहीं सर, ये थोड़े वर्ड कुछ अलग है इसके थोड़े से। ठीक है सर,
3: दूसरा चला दो डंडन लगने वाले का।
2: कौन सा वाला?
3: वही सर, चला दो डंडन लगने वाले।
2: ओके सर।
4: If by chance an honest man like yourself should make enemies, then he would become my enemies. And then they would fear you.

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6। 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
3: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का, में आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को अपने मोबाइल प्ले स्टोर पर जाकर और सर्च करें रेडियो DS 89.6 और हमारे रेडियो ऐप को इंस्टॉल कर आप आनंद ले सकते हैं गंगापुर सिटी का तड़का FM चैनल का, जो मनोरंजन का सरताज है।
4: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडीइंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन DS, आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। Now I know that what is real foundation. The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET. Let's study with us for better career building.
5: Good afternoon, dosto. Dosto, वक्त हो चुका है, 4 बज चुके हैं इस वक्त। Good afternoon, dosto. दोस्तों, वक्त हो चुका है, 1 बज चुके हैं इस वक्त। आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का, मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरी सांस सुने थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम नहे तराने 89.6 रेडियो DS पर।

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे में है शहर का कमाल DS89.6 शहर की धुन।
1: बेटा जो हजारों साल आगे था अपने समय से, जिसके शहरी नियोजन और जल निकासी प्रणाली इतनी सटीक थी कि मानो आज की आधुनिक सभ्यताओं को भी मात देती थी, जिसमें सड़कें 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को काटती थीं, पूरे सभ्यता में घरों के निर्माण के लिए एक ही आकार की पकी हुई ईंटों का उपयोग किया जाता था। लेकिन सवाल उठता है कि इतनी विकसित सभ्यता आखिर विलुप्त कैसे हो गई? अगर आज ये सभ्यता होती तो हम कितना आगे होते? साल था 1856। भारत उस समय ब्रिटिश शासन के अधीन था और ब्रिटिश सरकार पूरे भारत में रेलवे नेटवर्क बिछा रही थी ताकि सैनिकों और माल का आवागमन आसान हो सके। उन दिनों पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, जो तब भारत का हिस्सा था, एक बड़ी रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था, कराची से लाहौर तक। जब इंग्लिश इंजीनियरों ने रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू किया तो उन्हें बड़ी मात्रा में पक्की ईंटों की आवश्यकता थी। तब आसपास के मजदूरों ने बताया कि एक पुराना खंडहर है, रुइंड माउंड है, जहां बहुत सारी मजबूत और पक्की ईंटें पड़ी हैं। वो स्थान था हड़प्पा। इंजीनियरों और ठेकेदारों ने मजदूरों को आदेश दिया कि वो वहीं से ईंटें निकालकर रेलवे ट्रैक के लिए इस्तेमाल करें। हजारों मजदूरों ने कई महीनों तक हड़प्पा के प्राचीन खंडहरों को खोदकर वहां की ईंटें उखाड़ी, जो कभी सिंधु घाटी सभ्यता के घरों, मंदिरों और दीवारों का हिस्सा थी। इन ईंटों से लाहौर और मुल्तान के बीच की रेलवे लाइन के स्लीपर और पुल बनाए गए। इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा के अवशेषों से इतनी ईंटें निकाली गईं कि उससे लगभग 150 किलोमीटर की रेलवे लाइन बन गई। ईंटें निकाले जाने के बाद हड़प्पा स्थल का बहुत सारा हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। ये एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक त्रासदी थी, क्योंकि हजारों साल पुराने अवशेषों को बिना किसी वैज्ञानिक अध्ययन के नष्ट कर दिया गया था। लेकिन इस घटना के बाद कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का मार्ग प्रशस्त किया। अलेक्जेंडर कनिंघम का दौरा। 1875 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस स्थल का दौरा किया। उन्होंने ईंटों की व्यापक लूट को देखा और लिखा कि हड़प्पा से निकाली गई ईंटें 100 मील यानी लगभग 160 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाने के लिए पर्याप्त थी। कनिंघम को कुछ मोहरें भी मिली जिन पर अज्ञात प्रतीकों की नक्काशी थी, लेकिन वो उनके महत्व को पूरी तरह से नहीं समझ पाए। उन्होंने इसे किसी प्राचीन बौद्ध स्थल का अवशेष माना और इस तरह इस स्थल के असली महत्व को पहचानने में और देरी हुई। वैज्ञानिक खुदाई की शुरुआत हुई जब 1920 के दशक में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में और राखल दास बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो में व्यवस्थित खुदाई शुरू की। इसी खुदाई से ये खुलासा हुआ कि ये सिर्फ ईंटों के ढेर नहीं बल्कि एक विशाल और उन्नत सभ्यता के अवशेष थे। इस तरह रेलवे लाइन के लिए ईंटों का इस्तेमाल करना हालांकि उस समय एक विनाशकारी कार्य था, लेकिन ये अनजाने में ही सही भविष्य के इतिहासकारों और पुरातत्वविदों का ध्यान इस क्षेत्र की ओर खींचने का एक कारण बना। ये जानने के बाद कि रेलवे लाइन के लिए हड़प्पा के खंडहरों से ईंटें निकाली गई थीं, पुरातत्वविदों ने महसूस किया कि इस क्षेत्र में कुछ बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके बाद व्यवस्थित खुदाई और शोध का एक लंबा सिलसिला शुरू हुआ, जिससे एक एक करके कई अन्य नगरों की खोज हुई। आइए देखते हैं इस खोज यात्रा में क्या क्या हुआ और किन प्रमुख नगरों को उजागर किया गया। इतिहासकारों के अनुसार 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा सबसे पहले हड़प्पा का सर्वेक्षण और उत्खनन किया गया, जिससे एक प्राचीन और उन्नत सभ्यता के अवशेष सामने आए। इस सभ्यता को दो मुख्य भागों में संगठित किया गया था, एक आम आवासीय क्षेत्र जिसे नगर टीला कहा गया और एक किलेबंद क्षेत्र जिसमें संभवतः शासक या धार्मिक व्यक्ति रहते थे। उत्खनन के दौरान अच्छी तरह से नियोजित घरों, जल निकासी प्रणालियों और मुहरों और मूर्तियों जैसी कलाकृतियों की खोज से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में परिष्कृत शहरी नियोजन, कला और व्यापार था। लकड़ी के ताबूत में एक शव का दफनन, जो कब्रिस्तान R-37 से मिला था, इस बात का प्रमाण हो सकता है कि हड़प्पा में विदेशी लोग भी रहते थे या उनके साथ व्यापारिक संबंध थे। व्यापार और वाणिज्य। अधिकांश हड़प्पा के निवासी व्यापार और धर्म से जुड़ी गतिविधियों में लगे रहते थे। मोहरें जो यहाँ सर्वाधिक मिली हैं, व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण प्रमाण है। श्रम और समाज। हड़प्पा में मजदूरों के लिए बैरक यानी श्रमिक आवास और कर्मचारियों के लिए अलग आवास की व्यवस्था थी, जो जो एक संगठित समाज की ओर इशारा करती है। प्रकृति पूजा एक स्त्री की मृणमूर्ति जिसके गर्भ से पौधा निकल रहा है को सर जॉन मार्शल ने पृथ्वी माता कहा था। यह इस बात का प्रतीक हो सकता है कि वे प्रकृति की पूजा करते थे और प्रजनन शक्ति में विश्वास रखते थे। उत्कृष्ट कारीगरी यहां से काले पत्थर की नर्तकी की मूर्ति और लाल पत्थर की मानव मूर्ति जैसी उत्कृष्ट कलाकृतियां भी मिली हैं जो उनके कला कौशल को दर्शाती हैं। साम्राज्य और शासन स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को दोनों को एक विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा था, जिससे पता चलता है कि ये एक संगठित शासन व्यवस्था थी। हड़प्पा की व्यवस्थित खुदाई ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पुरातत्ववेदों के लिए एक नई दिशा खोल दी थी। जब 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा के सुनियोजित शहर के अवशेषों को उजागर किया तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने महसूस किया कि ये एक अकेली खोज नहीं हो सकती है, कहीं ना कहीं और भी ऐसे प्राचीन शहर दबे हो सकते हैं। इस खोज के बाद टीम के एक और उत्साही सदस्य राखल दास बैनर्जी ने अपना ध्यान सिंधु नदी के तट पर स्थित एक विशाल टीले पर केंद्रित किया। ये वही जगह थी जिसे स्थानीय लोग सिंधी भाषा में मोहन जोदड़ो यानी मुर्दों का टीला कहकर पुकारते थे। टीले पर बिखरे हुए मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों और प्राचीन ईंटों ने बैनर्जी को यकीन दिला दिया कि यहाँ कुछ बहुत ही प्राचीन और महत्वपूर्ण दफन है। 1922 में जब खुदाई शुरू हुई तो एक एक करके शहर के अवशेष बाहर आने लगे, लेकिन ये शहर हड़प्पा से कहीं ज्यादा विशाल और गव्य था। जो बात सबसे पहले ध्यान खींचती थी वो थी इसकी शानदार जाल पद्धति पर बनी समानांतर सड़कें जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। यहाँ की सबसे चौड़ी सड़क लगभग 10 मीटर चौड़ी थी, जो उस समय के लिए एक आश्चर्यजनक उपलब्धि थी। ये व्यवस्थित शहरी नियोजन दर्शाता था कि ये कोई साधारण बस्ती नहीं बल्कि एक उन्नत सभ्यता का केंद्र था। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी और भी अद्भुत चीजें सामने आई। टीले के सबसे ऊंचे हिस्से पर
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन

0: दिल से दिल तक 89.6 अन्ना गार का नाम दिया।
1: 45 मीटर से अधिक लंबा और 15 मीटर से अधिक चौड़ा ये विशाल ढांचा किले के अंदर स्थित था, जो संभवतः पूरे शहर के लिए अनाज का भंडारण करता था। ये विशालता उस सभ्यता की आर्थिक समृद्धि को दर्शाती थी। लेकिन मोहन जोदड़ो की सबसे शानदार खोज थी विशाल स्नानागार। सर जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा था। ये 11 मीटर से अधिक लंबा और 7 मीटर से अधिक चौड़ा एक केंद्रीय जलाशय था, जिसमें उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियां उतरती थीं। इसके निर्माण में बिटुमिन का इस्तेमाल किया गया था ताकि पानी का रिसाव ना हो सके। ये स्नानागार धार्मिक अनुष्ठानों के लिए इस्तेमाल होता था, जिससे हमें उनके धार्मिक विश्वासों के बारे में जानकारी मिली। खुदाई में मिली कलाकृतियों ने उस सभ्यता की कला और संस्कृति को उजागर किया। यहाँ से सबसे ज्यादा मोहरें मिली, जिनमें से एक मोहर पर पशुपति नाथ यानी शिव की आकृति अंकित थी। इसके अलावा एक पत्थर की नृत्यरत आकृति भी मिली, जिसे सर जॉन मार्शल ने नटराज शिव कहा था। कांसे की बनी नर्तकी की एक मूर्ति भी मिली, जिसे बनाने के लिए द्रवी मोम विधि का इस्तेमाल किया गया था, जो उनके धातु शिल्प कला के उच्च स्तर को दर्शाता है। नाव के चित्र और मॉडल से पता चला कि उनका व्यापार समुद्री मार्ग से भी होता था। खुदाई में एक और दिलचस्प खोज हुई, चांदी के बर्तनों में कपड़े के अवशेष, जो ये दर्शाता था कि वो सूती कपड़ों का इस्तेमाल करते थे और वस्त्र उद्योग में उन्नत थे। इसके अलावा स्पिनिंग व्हील भी मिले, जो कपास की कताई के लिए इस्तेमाल होते थे, जिससे इस सभ्यता की तकनीकी उन्नति का पता चलता है।
2: ये सारी खोजें मिलकर ये साबित करती थी कि मोहनजोदड़ो एक सुसंस्कृत व्यापारिक और धार्मिक शहर था। स्टुअर्ट पिगट जैसे इतिहासकारों ने बाद में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को एक विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा, क्योंकि दोनों शहरों में इतनी समानताएं थी। मोहनजोदड़ो के प्रमुख उपनाम जैसे सिंध का नखलिस्तान और रेगिस्तान का बगीचा इस शहर की भव्यता और समृद्धि को दर्शाते थे। इस तरह मोहनजोदड़ो की खोज ने हड़प्पा की खोज को पुष्ट किया और एक विशाल उन्नत सभ्यता के अस्तित्व को स्थापित किया, जिसने शहरी नियोजन, व्यापार और सार्वजनिक स्वच्छता के क्षेत्र में तत्कालीन विश्व को एक नई दिशा दी थी। मोहनजोदड़ो की खोज के बाद सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ा चन्हूदड़ो की खोज से। ये कहानी हमें दिखाती है कि ये सभ्यता केवल बड़े शहरी केंद्रों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें छोटे विशेषीकृत और कुशल औद्योगिक शहर भी शामिल थे। मोहनजोदड़ो की विशालता और भव्यता ने पुरातत्वविदों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या इस सभ्यता में केवल ऐसे ही बड़े शहर थे या कुछ और भी था। इसी उत्सुकता के साथ भारतीय पुरातत्वविद एनजी मजूमदार ने 1931 में मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण में सिंधु नदी के तट पर एक छोटे से टीले की खुदाई शुरू की। ये टीला हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तरह विशाल नहीं था, और ये देखकर आश्चर्य हुआ कि यहाँ किसी दुर्ग या किले का कोई अस्तित्व नहीं मिला। ये एक अनूठी बात थी, क्योंकि उस समय तक हर बड़े हड़प्पा शहर में दुर्ग मौजूद था। इससे ये साबित हुआ कि ये शायद एक सैन्य केंद्र नहीं बल्कि कुछ और था। खुदाई आगे बढ़ी और जल्द ही इस शहर का असली चरित्र सामने आया। ये पता चला कि चन्हूदड़ो एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र था। शहर की गलियों में घुमावदार ईंटें मिली, जो इस बात का संकेत थी कि यहाँ निर्माण कार्य भी बड़े पैमाने पर होता था। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण खोज थी, वो थी एक बड़ा गुड़िया और मनका निर्माण का कारखाना। यहाँ पर अर्ध तैयार मनके, मनकों को छेद करने वाले उपकरण और मनकों को बनाने की पूरी प्रक्रिया के अवशेष मिले। ये दर्शाता था कि चन्हूदड़ो मनका बनाने का एक प्रमुख केंद्र था, और यहाँ के कारीगर अपने शिल्प में बहुत कुशल थे। यहाँ के कारशालाओं में तरह तरह के पत्थर जैसे कार्नेलियन, जेस्पर और क्वार्ट्स के साथ साथ धातु और टेराकोटा से भी मनके बनाए जाते थे। 1935-36 में अर्नेस्ट मैके ने भी यहाँ उत्खनन कार्य कराया, जिससे और भी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई। खुदाई के दौरान हड़प्पा सभ्यता के बाद के चरणों के झूकर और झांगर संस्कृति के अवशेष भी मिले। ये अवशेष दिखाते हैं कि चन्हूदड़ो में हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भी लोग निवास करते रहे थे। इस तरह चन्हूदड़ो ने हमें सिंधु घाटी सभ्यता की एक नई तस्वीर दिखाई। ये केवल बड़े सुनियोजित शहरों की कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी सभ्यता की कहानी थी, जिसमें छोटे विशेषीकृत और कुशल औद्योगिक केंद्र भी थे, जो कुशल कारीगरों और निर्माताओं से भरे थे। चन्हूदड़ो ने हमें उस सभ्यता सभ्यता के आर्थिक जीवन और उत्पादन क्षमता की गहरी समझ दी, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की विशालता से अलग थी पर उतनी ही महत्वपूर्ण थी। लोथल की खोज। 1954 में जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के एक उत्साहित दल ने गुजरात के सुनसान इलाकों में अपनी खोज शुरू की, इस दल का नेतृत्व पुरातत्वविद श्री SR राव कर रहे थे, जिनके मन में एक ही जुनून था, भारत की खोई हुई विरासत को उजागर करना। मानसून के मौसम में जब हर जगह पानी भरा हुआ था, उनकी टीम का एक सदस्य लगभग निराश हो गया था, लेकिन टीम के वाहन चालक बाबूराव कदम के दृढ़ संकल्प ने उन्हें आगे बढ़ाया। दल ने पानी से भरे दलदली इलाकों को पार किया और अंततः वो लक्ष्मीपुरा के पास एक छोटे से टीले पर पहुंचे। स्थानीय लोग इस टीले को लोथल कहते थे, जिसका गुजराती में अर्थ है मृतकों का टीला। उस टीले से उन्हें मिट्टी के बर्तन और अन्य वस्तुओं के कुछ टुकड़े मिले। ये टुकड़े देखकर राव को यकीन हो गया कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण हड़प्पा बस्ती का पता लगा लिया है। उस दिन उनकी मेहनत और लगन रंग लाई और दुनिया को एक खोई हुई सभ्यता का प्रवेश द्वार मिल गया। खुदाई और आगे की खोज। लोथल के रूप में एक हड़प्पा बस्ती की पुष्टि होने के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने 13 फरवरी 1955 से 19 मई 1960 तक खुदाई का कार्य शुरू किया। इस खुदाई के दौरान लोथल में 5 अलग अलग चरणों की परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के सबूत मिले। खुदाई के दौरान दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात डॉकयार्ड का पता चला, जिसने लोथल को वैश्विक पुरातत्व के लिए महत्वपूर्ण बना दिया। यहाँ विदेशी व्यापार के लिए बंदरगाह का इस्तेमाल होता था और मेसोपोटामिया और अफ्रीका जैसे दूर दराज के स्थानों से व्यापार के प्रमाण भी मिले हैं। गोदी के साथ साथ मनका बनाने का कारखाना, गोदाम और एक उन्नत जल निकास प्रणाली भी मिली, जो लोथल की उत्कृष्ट शहरी नियोजन को दर्शाती है। इस तरह एक सुव्यवस्थित सर्वेक्षण और एक उत्साही टीम के प्रयासों से लोथल को फिर से खोजा गया और दुनिया ने सिंधु घाटी सभ्यता के एक और महत्वपूर्ण अध्याय से परिचित होकर उसकी समृद्ध समुद्री विरासत को जाना। कलीबंग की खोज। 1961 में घोष की पहचान के बाद बीबी लाल और बीके थापर के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर खुदाई का काम शुरू हुआ। उनकी टीम ने जमीन के नीचे छिपे खजानों को परत दर परत खोद कर बाहर निकालना शुरू कर दिया। खुदाई में शहर के 2 अलग अलग टीलों का पता चला, एक टीला दुर्ग क्षेत्र का था और दूसरा नगर क्षेत्र का, और दोनों अलग अलग दीवारों से घिरे हुए थे। जैसा कि नाम से पता चलता है, खुदाई के दौरान काले रंग की चूड़ियों के टुकड़े मिले, जिससे लोकल नाम का ऐतिहासिक प्रमाण मिला। लेकिन सबसे चौंकाने वाली खोज वो थी जब एक फर्श से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले, जो उस समय की वास्तुकला की एक झलक दिखाते हैं। खुदाई के दौरान एक और महत्वपूर्ण खोज सामने आई, जूते हुए खेत के साक्ष्य। ये विश्व में अपनी तरह का सबसे पहला ज्ञात साक्ष्य था, जिससे पता चला कि हड़प्पा वासी खेती में बहुत उन्नत थे। इसके अलावा 7 आयताकार अग्निकुंड या अग्नि वेदिकाएं भी मिली, जो शायद धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उपयोग की जाती थी। इन सब चीजों के साथ साथ बेलनाकार मोहरे भी मिली, जो गालीबंगा के व्यापारिक संबंधों की ओर इशारा करती हैं। इस तरह अमलानंद घोष की खोज से शुरू हुई ये कहानी बीबी लाल और बी के थापर के उत्खनन के बाद पूरी हुई और कलीबंगा एक प्राचीन, समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण हड़प्पाकालीन शहर के रूप में दुनिया के सामने आया। उसके बाद और भी प्रमुख नगर का खोज हुए, जैसे बनावली, धौलावीरा, राखी गढ़ी और रोपण। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक।
3: Things!

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: ईट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6
0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: ईट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 6 रेडियो DS जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6
0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: Friends, my name is Aastha Bansal, studying in 9th class. Before coming in DS, I didn't know about foundation. Now I know that what is real foundation. The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in hard exams like JEE and NEET. Let's study with us for better career building.
3: दोस्तों वक्त हो चुका है, तो बज चुके हैं इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम नहे तराने, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम आपका मनपसंद भूली बिसरी याद 89.6 रेडियो DS पर।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6
0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: ईट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
2: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
2: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
4: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।
5: दोस्तों वक्त हो चुका है 3:00 इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरी सांस सुनी थी कार्यक्रम भूली विसरी यादें, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: Chernexus.
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: हाँ जी, किवें लगे तुहानू इह गाणा? लाइक ते कमेंट करके जरूर दस्यो ते मेरे डेब्यू ट्रैक विदाउट यू नू वी जरूर सुनियो ते मेरे नवे नवे गाने सुनने दे लई गीत एम पी थ्री चैनल सबसक्राइब करो। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू।

0: शेयर नेक्सस।
1: हाँ जी, किवें लग्या मेरा गाना? लाइक ते कमेंट करके जरूर दस्यो, तो मेरे नवे नवे गाने सुनने के लिए गीत एमपी3 दा यूट्यूब चैनल सबसक्राइब करो। थैंक यू।

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: ईट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6
0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: Friends, my name is Astha Bansal, studying in 9th class. Before coming in DS, I didn't know about foundation. Now I know that what is real foundation. The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET. Let's study with us for better career building.

0: इवनिंग दोस्तों। दोस्तों वक्त हो चुका है 4 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टोन कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: DS साइंस Academy, क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
3: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
2: DS साइंस Academy, नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
3: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव, क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
2: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। DS साइंस Academy, नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर।
4: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
5: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।

0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: DS Science Academy, क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
2: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
1: DS Science Academy, नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
2: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव, क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
1: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। DS Science Academy, नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडीइंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन DS, आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ DS इज वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड सपोर्टिव, एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइन स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डाउट क्लासेस

0: Hello friends, my name is Astha Bansal, studying in 9th class. Before coming in DS, I didn't know about foundation. Now I know that what is real foundation. The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point. In quality, regular dark classes enhances our concept building for better future and selection in higher.
1: क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
2: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
1: डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
2: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव, क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
1: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर।
3: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89।

दोस्तों वक्त हो चुका है 4:29 का। इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर। दोस्तों कार्यक्रम की पहली फरमाइश हमारे पास आई है सवाई माधेपुर से हमें कॉल किया है मोनिका मीणा जी ने। सुनते हैं इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन

0: हेलो नमस्ते
1: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: चौधरी निवेदन कर रहे हैं वाणी जी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: गाना सुपर हिट लाए हैं रेडियो डी एस के।
1: हाँ जी बताइए।
0: जन्माष्टमी का सरप्राइज है रेडियो डी एस के लिए।
1: हाँ सर बताइए।
0: दलाल पिक्चर का है।
1: हाँ जी।
0: मैंने भी तो चोरी चोरी।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिएगा ना।
0: थैंक यू।
1: यू वेलकम।

0: हमारे घर आपकी बातें।
1: हेलो,
0: नाम बताए सर आपका।
1: शुभम
0: शुभम जी, खास से बात कर रहे हैं। गाना बताए सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं
1: सर? हम इस अमित है
0: सुना रहे हैं सर आपको, फरमाइश के बेहतरीन सर। हेलो,
2: एसटीएफ डिपार्टमेंट।
3: आज सारा चार्ज क्लियर होगा मैडम।

0: नाम साबिर, गंगापुर सिटी से बोल रहा हूँ।
1: साबिर जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस पर?
0: गाना है फलसफा प्यार का तुम क्या जाना।
1: हाँ जी,
0: फलसफा प्यार का तुम क्या जाना।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश को।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: नाम बताएं सर।
1: रणवीर सिंह।
0: रणवीर जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मुक्ता कॉलोनी।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: सर डांडा नोड़े वाला का दिल दे बैठी का सॉन्ग लगा दो।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश के सॉन्ग।

0: हो?
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: दिव्या पूजा।
1: कहाँ से बात कर रहे हो? कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: दीवाना ना जाने कब होगा।
1: कौन सा?
0: दिल दीवाना ना जाने कब होगा।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी।

0: माहीनूर।
1: माहीनूर कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर सिटी।
1: बताएं मैम, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: ढूंढू मैं मेरे ब्रदर की दुल्हन।
1: हाँ जी,
0: ढूंढू मैं मेरे ब्रदर की दुल्हन।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम, आपकी फरमाइश करें।

0: साइंस एकेडमी। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
1: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
0: DS साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
1: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं, बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
0: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। DS साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर।
2: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। में आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना।
3: 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: I cannot sleep.
1: People on the floor.

0: साइंस एकेडमी। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
1: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
0: DS साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
1: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं, बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
0: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें DS साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर।

0: अरे मैडम आइए आइए, कैसी हैं आप? ये रहा आपकी शादी का कार्ड। अरे वाह,
1: क्या
2: या इट्स नाइस।
3: भैया खुद डिजाइन करके गए थे?
0: ये रहा डिजाइन।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। में आपका रेडियो दोस्त

0: मनोरंजन का सरताज है।
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
2: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
2: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
4: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।
5: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
6: डीएस साइंस एकेडमी। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
7: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
6: डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
7: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव, क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
6: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर।

0: डीएस साइंस एकेडमी। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
1: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
0: डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
1: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं, बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
0: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
4: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
5: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
4: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं, जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां, जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
6: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।

संत कबीरदास जी महाराज ने प्रेम की परिभाषा बताते हुए कहा, जंगल में एक हिरण और हिरणी का जोड़ा रहता था। एक दिन शिकारी उस जंगल में आया और शिकार पकड़ने के लिए जंगल में फंदा लगाया। इधर हिरण और हिरणी जंगल में हंसते खेलते विचरण करते हुए उस फंदे के पास आ पहुंचे और हिरण का पांव उस फंदे में फंस गया। जैसे ही उस हिरण का पांव उस फंदे में फंसा, वो चिल्लाने लगा, रोने लगा। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनते ही सारे जीव जंतु और जानवर जंगल में भाग गए, परंतु प्रेम के धागों से बंधी उसकी हिरणी उसको छोड़कर नहीं गई। उसके पास खड़ी होकर भगवान से करुणा पुकार करने लगी, भगवान के आगे रोने लगी, मारे पिया जीरा प्राण बचा, आ हिरणी हरिसु अर्ज करे।

कूद जंगल में रिड़ जा, हरी करे सो हो। हे प्यारी, जो भगवान ने लिखा है वही होगा। तू मेरे लिए दुखी मत हो, कम से कम तू अपने प्राणों को बचाकर भाग जा। वे शिकारी अपने शिकार को ढूंढता हुआ आता ही होगा। वे हिरण बार बार हिरणी से निवेदन करने लगा, तू मेरे साथ अपने प्राणों को मत गवा प्यारी। पर वे हिरणी एक नहीं मानी और कहा कि हे प्रियवर, शिवाय तुम्हारे मेरा इस जंगल में क्या है। और भगवान के आगे रोते रोते पुकार करने लगी, हे प्रभु, तीन पांव पर खड़ी मृगली हरिसु हेत लगाए, और हरी रो सिंहासन डोल्यो बावरिया ने विष खाए। हिरणी की आंखों में आंसू देकर और अपने प्रीतम के लिए अपार प्रेम देकर भगवान को बड़ी दया आई और उसकी पुकार सुनी, और धीरे धीरे हिरण के फंदे खुलने लगे। तब कबीरदास जी महाराज ने कहा,

0: डीएस साइंस एकेडमी। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
1: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
0: डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
1: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
0: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर।
2: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

रुबा तावली चार सात बज लिए फिर ऑटो भी नहीं मिलने का।

0: भाई साहब।
1: हेलो मम्मा, कितने हो?
2: बेटा मैं ड्यूटी थे।
1: मम्मा तुसी कोई दो मंडे रेस्ट कीते आ?
2: हाँ जी बेटा, क्यों?
1: प्लीज मम्मा उन्होंने छाड़ दो ना।
2: बेटा जी मैनू अपनी ड्यूटी करन दियो।
0: और किसी को चाहिए था?
2: हरपाल सिंह, मैनु सारी फाइल्स रेडी चाहिए ने। नवे एसएसपी साहब किसी टाइम भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके
3: जी।

0: चैनल का जो मनोरंजन का सरताज है।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: DS साइंस Academy, क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
3: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
2: DS साइंस Academy, नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
3: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं, बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
2: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। DS साइंस Academy, नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर।

0: डीएस साइंस एकेडमी। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
1: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
0: डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
1: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं, बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
0: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर।

0: आपका चिंटू आ गया। चिंटू
1: बहुत बड़ा हूँ मैं, अब मैं तुझे अपने कंधों पर रख सकता हूँ।